0: 头吗？龟孙在哪里干啊？龟孙在哪里干？哪干哪里肉呀？锅啊巴西。
1: कहाँ वाले सीखने लगा कोई गीत अनुसरिले?
0: गीत लगा के ते बात सीखे को।
1: मोबाइल बाता? ओ? गीत सुनना मन पड़ता हो?
0: आ।
1: देवला बनी गाऊँ ना उनसे देवला बनी मन पड़ता। अनि अनुसरी एकले हूँ दा घर में नहीं अनि गीत गाऊँ ना उनसे क्यों नहीं एकले हूँ दा केरी?
0: गाऊँ
1: सो। गाऊँ ना उनसा? ओ? अनि और को तो पहले मन पड़े गीत से कौन हुए सुबह?

0: किंगलीटे सर लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र में पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर में
2: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ एमडीबीएस एमडी इंटरनल मेडिसिन डीएम कार्डियोलॉजी
3: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 6 गते शनिवार समय बिहान 10 बजे देखि
2: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर में आउने हुनुहुन्छ
1: उपचार हुने समस्याहरु
2: हृदयघात हार्ट अटैक उच्च रक्तचाप धड़कन अनियमितता मुटुमा दुखै वा जलन स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या हात खुट्टाहरु झमझमाउने मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान
1: साथै मुटुको इको रगत जाँच र ईसीजी पनि गरिन्छ थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 98216-14306 र 98486-39785 सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त बनी हो ना वट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98481 43 26

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
1: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
5: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ
6: सिद्धार्थ चोक टिकापुर कैलाली सञ्चालक दुर्बा सुनार

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रथ गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना
3: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिवारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ
1: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे
3: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-892

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषक खोज खबर में यहां उपकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फेस सुन्ती हलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से बर्खा मनसून जन्य रोग से बस्ना गांव टोल सफाई में नागरिकों का सक्रियता। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री भत्ता आज विश्वास के मत लेना। 11 महीना से अमेरिका में रहलक सांसद देउबा पदमुक्ता। 11 महीना में 7,53,000 से ढेर भुगतानी। और सरकारी कर्मचारी हुकरन 15-15 दिन में नई तलब निकास करना महालेखा के परिपत्र। पूरा खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भत्ता बुधवार के विश्वास के मत लेना हुलबा। नेकपा सांसदीय दल के नेता रलक भत्ता 29 सावन में एमाले के समर्थन में मुख्यमंत्री बनल हई। भत्ता मंगलवार नेकपा सांसदीय दल के बैठक बोलाके बुधवार विश्वास के मत लेना निर्णय करल के हो। वहां मंगलवार नई सचिवालय है पत्रचार करती विश्वास के मत प्रायोजन के लाख बैठक बोला देना कहल रहा। वहां के अनुसार समेत दोपहर के 1 बजे बैठना करके प्रदेश सभा के बैठक बोला गिल। सचिवालय के सचिव देव बहादुर बोगती बटोले बाट वहां के अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैठक से समेत बोलना निर्णय कर सकल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री प्रकाश बहादुर देउबा पदमुक्त हुलबाट लगातार 10 से ढेर समेत बैठक में बिना सूचना में अनुपस्थित रहलक कारण देखी देउबा पद से रिक्त हुलक। प्रदेश सभा सचिवालय से तैयार कर रिपोर्ट के आदेश में सभामुख भीम बहादुर भंडारी सदर कर संगे वहां पदमुक्त हुलके हो। निर्णय समेत आगामी बैठक में सभामुख से जानकारी करें तैयारी करल बा। देउबा गैल वर्ष भदौ 28 गते जेएनजी आंदोलन लगते व्यक्तिगत काम के लात अमेरिका गैल रहें। ओकर पाछे स्वास्थ्य में समस्या देख गिल कहती वहां उपचार के लाख अमेरिका में बैठल रहें। अमेरिका में गैलक 11 महीना पुग सकला से फिर वहां नेपाल नई लौटल के हुए। छठौ अधिवेशन के क्रम में लगातार 5 बैठक में अनुपस्थित हुई पाछी देउबा चैत 23 गते प्रदेश सभा सचिवालय पत्र पठैती अपना स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार के क्रम में अमेरिका रहल जानकारी करायल है। मनो ऊ पत्र पठायल समय 4 महीना से ढेर बीत सकले से फिर देउबा नेपाल नई लौटल के हुए। वहां के उपचार के अवस्था और नेपाल में लौटना मिति के बारे में नेपाली कांग्रेस के नेताओं का स्पष्ट जानकारी नई रहल बटोले बाट। छठौ अधिवेशन में 25 थो समेत बैठक बैठकलक देउबा 8 दिन के उपस्थित समेत रहें। ओकर पाछे 7 और 8 अधिवेशन में कौनो फिर बैठक में उपस्थित नहीं रहल रहें। पाछे 27 थो समेत बैठक में वहां हाजिरी नहीं रहलक। प्रदेश सभा सचिवालय के समेत अभिलेख में उल्लेख करल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के दोसरो कार्यकाल में हालसम 128 थो बैठक बैठल बा। उमध्ये देउबा 60 थो बैठक में केल उपस्थित हुई रहें। अमेरिका में रहलक देउबा के खाता में प्रदेश सभा सचिवालय के नियमित रूप में सेवा सुविधा बाफत के रकम पठैती आयल बा। सचिवालय के अनुसार 11 महीना केल देउबा 7,53,500 रूपया समेत बुझतेकल बाट वहां के खाता में मासिक पारिश्रमिक धारा बिजुली संचार समेत अतिथि सत्कार लगायत के शीर्षक में रकम पठैती आयल बा। प्रदेश सभा सचिवालय के पारिश्रमिक बाफत के 56,500 रूपया धारा बिजुली मा 2,000 संचार सुविधा बाफत 3,000 ओ समेत अतिथि सत्कार बाफत के समेत 7,000 रूपया करके मासिक 68,500 रूपया समेत देउबा के खाता में जमा करते आयल बताया गया बा। वस्तु करके गैल जेठ में निजी आवास मरमत में समेत शीर्षक में थप 35,000 रूपया समेत वहां के खाता में पठा गया बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम। विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलालीको अत्यन्त जरूरी सूचना। व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लागत साझेदारी सहयोग कार्यक्रम रहेकाले आयोजनासँग साझेदारी गर्नको लागि रितपूर्वक भरिएको माग आवेदन प्रस्ताव आयोजनाको कार्यालय टीकापुर वा सम्पर्क कार्यालय सुक्खर कैलालीमा भदौ 5 गते भित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आयोजनाको फेसबुक पेज रानी जमरा कुलरिया वा वेबसाइट वा सम्पर्क नम्बर 091561414 र 091561415 वा कार्यालयमै सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली।
2: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन, त जान्नु पर्यो जस्तै लाग्छ।
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091560-228-97083-58835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। बरसात के समय में गांव टोल में मन आब्बा आपन घर में सरसफाई में जुटल बाटे। बरसात के समय में तमाम मेर के संक्रमण फैले से एक से गांव गांव में आपन गांव में सरसफाई में जुटल के हो। इस समय फुर्सत के समय फेर अलग ओर से तमाम प्रकार के रोग से बचना गांव सफा धरना गांव गांव में सरसफाई में लागल गांव के अगुआकरण की कहाई बा। जानकी गांव पालिका के मन अब्बा अपन गांव टोल में सरसफाई में जुटल के हो। टोल में आपन गांव सफा धरक लाग गांव सुधार करक लाग गांव भरिक मनैन जमा करके सरसफाई अभियान करती रहलक। गांव अंजर पांजर झार सरसफाई नहीं करल से तमाम मेरके संक्रमण हुइना डेंगू तथा अवर रोग लागे सेक्न रलक वर्षे सरसफाई कर्तिरलक जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 भगरैया के बरघर तुलाराम चौधरी के कहाइबा वस्तक जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 अमौरा माफे गाउँ सरसफाईमा लागल बा यी समयमा फे ढेर वर्षा रलक बरसात हुइले कोर्से गाउँ खटी खटामा पानी जम्ती रलक ओर्से संक्रमण हुइसेक्ना रहलक ओर्से नै गाउँ भरिक मनै निकर समेत मिलके अभियान के रूपमा सरसफाई गर्दै रहल जानकी पाँच अमौरा के अगुवा महिला तथा पूर्व बरघर बसन्ती डंगौरा के कहाइबा अब फुर्सद के समय रहलक ओर्से आजर पाजर झार हुइना से सपुआइना और विभिन्न प्रकार के रोग बच्चा बच्ची हुकरन सरसफाई समेत जुटी रलक जानकी आठ के तारा चौधरी के कहाइबा सकत जानकी गाउँपालिका आठ मटेरा के बरघर दिमान चौधरी फे आपन गाउँ हे समेत सरसफाई कर परत सक गाउँ आन्जर पान्जर नै समेत सरसफाई समेत जुटला से लामखुट्टे लगायत के समेत किरा औस्तक फटेङ्ग्रा से फे बचे सेक्ना रलक ओर्से गाउँभरिक मनै सरसफाईमा जुटल बटुवागिल्बा वर्षात के समयमा झाडा पखाला हैजा स्तक टाइफाइड जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लगायत के समेत रोग संक्रमण देख पर्न रलक ओर्से आफन घर आन्जर पान्जर सरसफाई गर्न आवश्यक रलको सक्कु जाने आफन घर आन्जर पान्जर सरसफाईमा जुटिरहना जानकी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख जितबहादुर चौधरी के कहाइबा वहाँ पालिका मनसे फे गाउँघरमा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्तिरहलक ओस्तक रेडियो मनसे फे सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण हुइतिरहलक समेत जानकारी दिलेबाटै संघीय सरकार माठतकी निकायमा कार्यरत सक्कु सरकारी कर्मचारी हुकरन 15-15 दिनमा तलब भत्ता निकास गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसे जनाइलबा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसे कालिक सोमबारके परिपत्र मार्फत समेत अर्धमासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्न व्यवस्था मिलैन माठतकी सक्कु कार्यालय हुकरन निर्देशन दैगिले खो अर्थ मन्त्रालयसे नीतिगत मार्गदर्शन समेत बजेट वक्तव्यमा लौ व्यवस्था लागू गर्न लागिलक कार्यालयसे जनाइलबा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयके अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत के निकायमा कार्यरत कर्मचारी हुक्रन समेत हरेक महिना 15 दिन समेत कटलपासे अर्धमासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्न कहलबा बजेट वक्तव्य अनुसार सरकारी प्रोत्साहन भत्ता समेत के यह प्रक्रियामा भुक्तानी गर्न निर्देशन दैसकलबा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी संघे भारतके स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठसे शिष्टाचार भेट गर्नबाट रक्षा मन्त्री समेत रलक प्रधानमन्त्री शाह संघे समेत सिंहदरबार स्थितके प्रधानमन्त्री तथा समेत मन्त्री परिषदके कार्यालयमा सेनाध्यक्ष सेठसे समेत शिष्टाचार भेटवार्ता गरल रहे प्रधानमन्त्री के प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल जानकारी दिलेबाट भेटमा नेपाल केलक भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से समेत सहभागिता जनाइल रहे प्रधान सेनापति के अशोक राज सिग्देल से औपचारिक निमन्त्रणामा सेनाध्यक्ष समेत सेठ चार दिने भ्रमण के सिलसिलामा आटवार काठमाडौँ पुगल रहे 5 सदस्य भ्रमण दल के मार समेत रलक मुकार धर्मपत्नी कोमल सेठ फेबाटै सेनाध्यक्ष हे समेत सोमबार के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाली सेना के मानर्थ महारथी के समेत दर्जनी चिन्ह प्रदान गर्ल रहै खोजखर मायगरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछ फेरसै भी सुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
6: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
7: टिकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
6: तपसिल
7: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
6: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
7: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
6: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो दुई प्रति,
7: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा तीन महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
6: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
7: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
8: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
9: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
10: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
11: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगरके घर से बाहर नै निकर्छु।
10: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
11: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046-77417। विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। नेपाल रेडका सोसाइटी के पूर्वा अध्यक्ष संजीव थापा सहित के पूर्व पदाधिकारी हुक्रा पक्राउ परल बाटै प्रहरी के केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी से वहां उक्रन पक्राउ करल के हो। सीआईबी से समेत आईजी उमा चतुर्वेदी के अनुसार समेत जग्गा किन्न क्रममा अनियमितता करके ठगी करलक आरोपमा पक्राउ परल बटागिल बा। सीआईबी से महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय से प्राप्त हुईलाक रेड क्रस सोसाइटी समेत ऊपर समेत हुईलक अनियमितता छानबीन के प्रतिवेदन के अध्ययन करबेर 73 भदौ 22 गते प्रकाशित सूचना बमोजिम रेड क्रस के गोदाम घर संचालन केलक बिचौलिया मार्फत भुगतान लेना करल पागिले हो। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल बा। हाल मनसूनी न्यूनचापीय रेखा सदर स्थान के आसपास रहल बा। हाल देशभर साधारणतया मौसम बदलती बा। कोशी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के ढेर ठाव में हल्का से लेके मध्यम पानी पड़ती रहलक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। महाशाखा के अनुसार बुधवार दोपहर के फे समेत साधारणतया मौसम बदलने बा। हिमाली भूभाग के कुछ स्थान में मेघगर्जन और चट्टयांग सहित मध्यम खाल के वर्षा और हिमपात की संभावना रहल बा। पहाड़ी भूभाग में ढेर स्थान में बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभागमा कुछ स्थान तथा मध्य प्रदेश के साथ ही कोशी प्रदेश के तराई भूभागमा ढेर स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम खालके पानी पर्न सम्भावना बा। कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभागमा एक दुई स्थानमा भारी पानी पर्न सम्भावना बा। कोशी प्रदेश के तराई व मध्य प्रदेश के कुछ स्थानमा हावाहुरी सहित के सम्भावना रहलबा। आज रात की देश के हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलन बा। कोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराईमा साधारणतया मौसम बदलना और बाकी तराई भूभागमा आंशिक बदलना बा। देश के हिमाली भूभाग के कुछ स्थानमा मेघगर्जन और चट्याङ सहित मध्यम खालके पानी पर्न हिमपात के सम्भावना बा। पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम खालके वर्षा के सम्भावना रहल बा। कोशी और लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ स्थान मधेश तथा बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ स्थानमा मेघगर्जन और चट्याङ सहित मध्यम खालके पानी पर्न बा। यह समाचार संगे खोज खबर रायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। बर्खायाम में मनसून जन्य रोग से बाँचल गांव तोल सरसफाई में नागरिकरण के सक्रियता बढ़ल। 11 महीना से अमेरिका में रलक सांसद देउवा पदमुक्त। 11 महीना में 7,53,000 से ढेर भुगतानी लेने। सुदूरपश्चिम के मुख्यमंत्री भत्ता आज विश्वास के मत लेना हो। सरकारी कर्मचारी उपकरण 15-15 दिन में नई तलब निकासा करना महालेखा के परिपत्र। लिटा बगलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। आबे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनते विराम।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरिलाई।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम तो
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत्गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना, वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र में पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर, अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर में।
4: डाक्टर अजय भट्ट, मुटु रोग विशेषज्ञ, MDBS, MD, इंटरनल मेडिसिन, DM, कार्डियोलॉजी।
5: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 6 गते शनिवार समय बिहान 10 बजे देखी
4: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर में आउँदै हुनुहुन्छ।
3: उपचार हुने समस्याहरू हृदयघात, हार्ट अटैक, उच्च रक्तचाप, धड़कन अनियमितता, मुटुमा दुखै वा जलन, स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या, कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या, हात खुट्टाहरू झमझमाउने, मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप, एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप, सुगर, थाइराइड, दम, निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान, साथै मुटुको इको, रगत जाँच र ECG पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 98216-14306 र 98486-39785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।
6: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
7: तँ त एक्लो कहाँ छस् र यार, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
6: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
7: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
6: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछस् त यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
8: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 औं वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना।
1: टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 औं वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिबारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
0: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे।
1: टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-892।
2: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मई नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाय।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।
2: ला फिर यो गाड़ी ने धोका दिने भयो, जहिले पनि बैटरीकै समस्या बैटरीकै समस्या। यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला, टेन्सन मा भए म त अब।
6: भाइलाई थाहै रहिनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
2: ए, यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
6: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
7: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
2: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
8: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
6: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-58-28।

0: कार्यक्रम छोट मीट साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
1: जब देखनो तो हिन है।
0: यदि मन परत हुई कल से अपन मनन सुने न चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0951 सादा के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिसरे भी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz।

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो ठिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत प्रसारण हुई एक छुट्टे और अलग कार्यक्रम हो छोटमीट कार्यक्रम में विशेष करके अपने हुकन के संगे हम अपने हुकन संगे रमाइलो गप करे थी और अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल थारू भाषा के गीत हमरे सुनी थी तो अपने हुकन एक अलग चाहिए हम फोन करे पड़ना रहत और कहे पड़ना रहत की महीन ई मन परल गीत के बोल बटैना रहत वैसे की गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के हो से भी तो नाम बटैना रहत और वो गीत कौजा करे मन परत दुई ठोक कारण बटैना रहा था अंतिम में एक जन हम के पूरे नाम लेके समझक पाना रहा तब जाके हमारे गीत अपने सुनाई थी तो अपने को जे जहाँ हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विप्याल में यात्रा में जहाँ हुई भी जोन ठाव में हुई भी तो वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाएगी 091-5-61-255 के लाइन एकदम खुला बा अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला बा का नाम जानकारी करती बात संगारी मौसम सुहाना व पलघड़ी माइलो बा हेरी ना मौसम बाहर बाहर सुहाना बा टीकापुर के आसपास के ठाव में अपने ठाव के सिन बा घाम लागल बा की अपने ठाव में पानी आई था की अपने ठाव में शीतर कर ले बा की अपने ठाव के सिन बा जे जहाँ हुई भी कोई व्यापार व्यवसाय में बिजी हुई भी रेडियो के वॉल्यूम खोल ली हुई कोई ली लुगा सिया हुई भी शायद फिर रेडियो खोल के सुनती हुई भी सुनत हुई भी कोई कहूं हुई भी कोई कहूं भी जे जहाँ हुई भी अपन अपन फसल व्यापार व्यवसाय में बिजी हुई भी तो फिर रेडियो सुनत हुई भी जहाँ हुई भी यात्रा में हुई भी सुनत हुई बाइक यात्रा में हुई भी जहां रहे से मतलब रेडियो सुन के चाहे पक्के फिर साथ भेट हुई भी का नाम है भरपूर आसने बाटो सगा रूप जस्ते अपने कंठन रेडियो टी पर हुई गल से रेडियो टीकापुर जस्ते एफएम 101 मेगाहर्ज मार्फत सुने सकती गल से मोबाइल सेट 101 मेगाहर्ज मार्फत सुने सकती कल से और जहां इंटरनेट के पहुंच बा कल से हम www.tikapurfm.org हमारे वेबसाइट मार्फत सुने सकती कल से मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स जो टीकापुर एफएम के अपने एप्लीकेशन टीकापुर एफएम एप्स मार्फत सुने सकती और उसके के डायरेक्ट एप्स डाउनलोड करके सुने सकती कल से नेपाली पात्रो मार्फत और मार्फत से अपने हमारे पात्रो मार्फत से अपने हम सुने सकती का नाम जानकारी करती बात इंटरनेट के पहुंच रहा संघारियों के तो संघारियों के दोपहर समय हो अल्छी के समय हो संघारी तो अल्छी के समय कुछ रमाइल कर कार्यक्रम के शुरुआत में एक रमाइल गीत जोड़ब अपने चाहे हम डायल करते कर भी 091-5-61-255 एकदम लाइन खुले व तब समय रमाइल करी ई गीत से।

0: ইহে হো হামার চুনিমুনি দুনিয়া, ইহে হো হামার চুনিমুনি দুনিয়া। বেলগুলের মায়ালো গীত কার্যক্রমে জলি আপনি হুকান গেলা কার্যক্রম বাটরুম মিশন ভরখর রেডিও খোলা হইবি গেলছে সুন্দি বাটি রেডিও টিকাপুর এফএম 101 মেগাহার্জ বাটরুম মিশন অমিকা বেসা দেখেন টেকনি বেটকে ভাই আকাশ চৌধুরী ওর হামরে বাটি আপনি জাবনে সংগ্রহ হামরে লগভগ লগভগ ই কার্যক্রম হরেক আথবার কে সোমবার কার্যক্রম নিশানা লেগে এই থিও থেকে মঙ্গলবার কে দিন कार्यक्रम छोटमिट लेके थी उस बुधवार के दिन कार्यक्रम मंगलवार के दिन कार्यक्रम अंताक्षरी अपने गलत लेके थी कल से बुधवार के दिन कार्यक्रम छोटमिट लेके थी और बिहार के दिन कार्यक्रम मझेरी लेके थी। तो हमारे प्रत्येक दिन लगभग लगभग सात आम चार दिन हमने अपने हुकन के संगे मतलब एक से करीब करीब 1:45 बजे से हम अपने हुकन के संगे यात्रा करते। तो कार्यक्रम में सहभागी जन ऐटे करी कार्यक्रम ऐटे करी अपने हमारे रमाइल सहभागी तरी रमाइलो गफरी का नाम प्रोग्राम जानकारी कार्यक्रम फटाफट डायल कर भी सुने 91-561-255 और कह भी मैं ई गीत सुने चाहतू गीत के बल ये हो और गीत मन पर्ना के दुईठो कारण ई हो और अंतिम चाहिए एक जन के नाम पूरे ले भी कर से हम गीत अपने हैं जरूर सुना। तो कार्यक्रम में सभा के जने भी कोई टेलीफोन लाइन में आल बारे में बोल करना चाहूँ की हुई कहाँ से हजूर राम राम।
1: हेलो
0: हजूर राम राम राम राम हजूर।
1: हेलो नमस्कार
0: हजुर नमस्कार राम राम मोर आवाज सुनती
1: अपने बड़े कम आवाज आये हजुर
0: एकदम एक कम आवाज सुनती मरी हो
1: करे कम आवाज आये था।
0: ओहो आवाज तो कम नहीं ना चाहिए हमारे टेक में बैठल भाई बनाई बात है आवाज आये कि नहीं कुछ मजा
1: भूपू कमैया से बोलती हूँ भूपू कमैया से।
0: हाँ भूपू कमैया से तो बोला थी मैंने मोर आवाज क्लियर सुन ली कि नहीं
1: कम कम आयता सुना तुम सुना तो
0: ए ले लिया अब हमें सुधारना प्रयास करब नहीं भोपू का मैया से लाल बहादुर जी हो।
1: हजूर हजूर
0: कैसिन बा लाल बहादुर जी हाल खबर।
1: नमस्कार बा
0: नमस्कार नमस्कार कैसिन बा हाल खबर
1: यानी कम आवाज आयता हजूर हजूर से ढेर नहीं बतवा के वो गीत सुना दी दे।
0: कौन गीत बताई
1: सुनी।
0: हाँ हाँ मैं सुनती हाँ सुना तू कौन गीत कौन गीत
1: सुनने के बाद बहुत कम आया था ऊँचा वो है रेशम के गायल वाला माटी के और होना माटी के बीच होना माटी।
0: ओके ओके ओके ये गीत हमने सुना चलिए ठीक बा आपने मोर आवाज नहीं सुन थी ना ली आप एक लग बीता हुई
1: है आवाज काहे कम आया
0: राम राम
1: सुनना तो सुन कम
0: चली गई बात है लाल बहादुर जी हम अनकाल कर रहे वहां मर आवाज नहीं सुन रही कहीं का प्रॉब्लम हुई गई कोई टेक्निकली समस्या हुई की लागत की कोई टेलीफोन में कोई प्रॉब्लम हुई की या कोई हमार टेक्निकली कोई समस्या चलो कोई बारे हम सुधारना प्रयास करब। तो अथी पर चाहिए वहां कमैया फिल्म से लेहल

ये जगदीश हमाल के आवाज हो, वहाँ रेशम चौधरी की आवाज कह रहे हैं, ये जगदीश हमाल के गायल गीत हो और ये गीत हमारे कमाई फिल्म से डेले बारी ये गीत जोड़ा गीत के पास में डायल करते कर भी सुनने का 91.61 255 लाइन खुलेगा।

0: बिल्कुल रमाइलो गीत जोली कार्यक्रममा एकदमै मर्मस्पर्शी जस्तै गीत बाबु है मन में लग्ना गीत पक्कै फे गीत सुनके गीत के शब्द सुनके एकचोटि बहुत मन में बहुत कुछ जागत अपने को पक्कै फे मन पर हुई। लाल बहादुर चौधरी जी के फरमाइश में पर गीत रही और वहां है हमें देव जो धन्यवाद दे वहां हमारा आवाज सही क्लियर तरीके से नहीं सुनता है तब मार्से में वहां है देव जो बटवाई नहीं सकन अपने कृपया अपन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुनना मन हुई कल से अपने हमन सही कॉल कर सकती 91-5-61-255 के लाइन एकदम खुला बा फटाफट डायल कर भी कार्यक्रम में आईवी का नाम है अपने जानकारी करती बटू तो कार्यक्रम में आईवी कल से अपन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुने के लगा आईवी का नाम है अपने जानकारी करती बाटू कोई टेलीफोन लाइन में आल बाटे हजूर राम राम ओ वहां संपर्क में नहीं हुए लागत में ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैति करबी कार्यक्रम आईटी करबी अपने को हमारे रमाइलो सहभागी हजूर राम राम
1: राम राम
0: अपने मोर आवाज नहीं सुनती ही सुनत हुई की सुनत ही
1: सुनत हूँ सुनत हूँ
0: आवाज क्लियर आए थे नहीं ओके की बोल रही कहाँ से
1: फुलाराम
0: ए फुलाराम जी अपने की आवाज तो सुनल हस लागते है मैंने ठक्के ठक्के मई नहीं समझ पाई हूँ नहीं कैसे न फुलाराम जी हाल खबर
1: ठीक है सर
0: दिन कसी के बिताई थी फुलाराम जी गुरही और ही मनाई थी कि नहीं बर्दी और मनाईली कि नहीं
1: अब मुहले मनाईली है री वैसी के नहीं मना गिलस
0: ए आजकल के दिन कसी के बिताई थी कोहर काम धंधा कसी चलती बा
1: काम धंधा कहूँ नहीं हो सर आजकल घर ही बटू
0: घर ही बाटी नहीं आजकल मीठ मीठ घर के मनाई बना बना के देहत हुई और फुलाराम जी के बस खा के बीजत हुई
1: मार जी बटू फिर सर नहीं तो
0: ए वठी से चाहिँ लदिया ठाउरा पर नै
1: हजुर
0: ए ए चलो जे मेहनत करी उहे त हर कुछ पाए नै
1: हजुर हजुर
0: जे मेहनत नै करी त उ कहाँ पाए त
1: हजुर हजुर
0: एकदमै खुशी लाग्यो कार्यक्रममा सहभागी जनैली आज चाहिँ कसिन बा मौसम बर्दिया और हिमाली
1: पुरो मौसम एकदम ठीक है बाहिर एकदम स्पेसिफिक बा होइ
0: पानी ओनी आइट किन आइट
1: पानी बरसत
0: आजकल तो हिमालयपुर से लगभग टीकापुर सोझे सोझे डगर हुई गिल बा लगभग लगभग
1: सोझे सोझे
0: अब समय नहीं लागत हुई ना लगभग
1: नहीं लागत राजापुर के लागत
0: टीकापुर नहीं कार्यक्रम में कार्यक्रम में सहभागी जनैली एकदम खुशी लागल तो आज चाहिँ हमरे फुलाराम जी है कौन गीत सुनाई अपने के मन परल थारू भाषा के
1: एक तो असंख्या गीत सुनेगी सर मैं अब
0: अस्तिम के हा गीत काले से कौन गीत हो अपने गीत के
1: बोल
0: अस्तिम की हा गीत
1: हजुर के बदल
0: ऐसी न हो अस्तिम के हा गीत तो सुन भी अब अस्तिम के हा गीत अब खासे महीनों जानकारी नहीं मिल गया तब मारे
1: अस्तिम के गीत भी स्टूडियो में सुना देगी सर
0: ठीक बा अस्तिम के हा गीत हमें सुने ना प्रयास कर आप अस्तिम की के गीत नहीं कौसे करे रोज लिया अस्तिम की के गीत अब भाई
1: मैं तो पुरानी संस्कृति खूब मन पर छेरी पुरान विधि रिवाज सब कुछ भी हुडुंगा झुमरा खूब मन पर छेरी महियाना
0: तब मारे नहीं
1: कल्चर
0: तो अस्तिम की है गीत हमरे बजाइना प्रयास कर अब तीन सुनाई भी एक जन के नाम ली
1: अच्छा मोर बुढ़िया गोरी बिंटा है रे वो बुढ़िया सुनाइना चाहते हूँ
0: बुढ़िया के नाम लेहक पर अठाजिक दिन पूरे नाम लेहक पड़ना रहा था आज एक दिन ओके अब एक लग विदा हुई राम राम
1: राम राम
0: ओके वहाँ फोन कर ले रही फुला राम कुचिला वहाँ बर्दिया से वहाँ से रमायल होगा फिर और वहाँ के फरमाइश के गीत बाबाई एक ठो अस्तिम की है गीत कोई भी बजा देगी क्या नाम मिहन कला संस्कृति एकदमे मन परत तो मारे मिहन चाह अस्तिम की हारे झुमरा हुई उड़दूंगा सारा चीज मन परत तो हमारे एक ठो अस्तिम के गीत बजाने प्रयास करती बाटी हमारे गीत जोड़ गीत के पास में हम अपने डायल करते कर भी 91-5-61-255 के लाइन खुलेगा

0: हजुर बिल्कुल रमाइल अस्तिनकी गीत सुनलिए अपने हुकनके संगे संगे एकदमै मन परल अपने हुकन और मैं बाटो मैं मिशन के साथ दे रहे भाई आकाश चौधरी अति पर व्यापारिक विश्राम देना बेला हो गया कैसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और जाए ब्रेक के पास समय नहीं बाटू रेडियो छोड़ के कहूं पर जेबी तस्म के लगे एक व्यापारिक विश्राम विश्राम के पास समय नहीं बाटू डायल करता कर भी सुनने का ना दी 561-255 लाइन खुलेगा।
1: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तेज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
2: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टिकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी।
3: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ।
4: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
3: ओहो तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू।
1: हजुर, व्यापारिक विश्रामके पाछ पुनः स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा वाचनमा मिशन मिखे साथै भाइ आकाश चौधरी औ यो रेडियो टिकापुर एफएम 101.6 मेगाहर्ज। यी कार्यक्रममा विशेष गरी आफ्नै रोजल खोजल सोजल मन परल थारू भाषाकै गीत सुन्ना हो और हमन कलकर विकल से कभी यी गीत सुन्ने चाहौ। गीत मन पर्नके कारण यी हो। गीत चाहिँ एकजनाको नाम चाहिँ मै फलान है सुनाइ चाहौ कि आफ्नो बताएको पनि एकदमै जरूरी रहन तो फटाफट चाहिए डाल कर भी सुने 91561200 सुने का लाइन खुले भाग नाम जानकारी करम तो अठे ठोकी जोड़ा फैन से गीत के पास मैंने बाटू डाल करते कर भी सुने 91561200 सुनना लाइन खुले भाग

0: डरल हो एकदमै रमाइलो शब्द छ भरल गीत एकदमै गीत बुझके सुनबो बुझके एकदमै मजाके चाहिँ ध्यान दिएके सुनबो गाले एकदमै मार्मिक गीत एकदमै मन परल नि और अपने फैन मैं फिर एकदम ध्यान से सुन रहा हूँ आज गीत तो ध्यान से नहीं सुन ले रहा हूँ मारे ध्यान से सुन तो एकदम मजा लागल क्या भित्तर से मजा लागल क्या एक अवगी कार्यक्रममा सहभागी जनाइ टिकट विश्व 91-5-61-255 का लाइन एकदमै खुल्ला भए दुपहर समय हो अल्छी समय कुशासम रंगीत करेगलग अल्छी समय कुशासम रमाइलो रसपान करेगलग अभ्यौकन के संगे बटोमै और मिके भाई साथ देखने टेक्नो बैठ के भाई आकाश चौधरी और मैं बाटो अपनी क्या संगे मैं विशन कोई टेलीफोन लाइन में आल बाटे हजुर राम राम
1: हजुर राम राम
0: के बोली कहाँ से मिलन टेलर से मिलन चौधरी कसिन बा मिलन जी हाल खबर कसिन बा कसिन चलती बा अपने के टेलर अपने के लुगा सीना काम कसिक चलती बा आजकल अब तो धीरे धीरे आई गिल जे गुड़िया आई गिल अब स्टिमकी आई तब जाके वर्ग वैसे के मतलब चाट पर्व आईटी बा नहीं आई बरकदसिया देवारी आई चाट पर्व आईटी बा लेहंगा ब्लाउज सिवैना एकदम बढ़ल हुई का हूँ कि नहीं हुई ए नहीं हो बढ़ल अभी होता खासे टहल पहल नहीं हो नहीं तो कार्यक्रम में सब आगे जन एकदम खुशी लागल आज हमरे अपने कौन गीत सुनाई

0: नहीं यार, ये धनगरी जरल जरल राजपुर जरल मोटी का पुर समय गीत बोल रहे तरफ हमें एक तो सुना ठीक याद नहीं है।
1: कसी के कसी के
0: धनगरी जरल जरल मोटी का पुर का नाम लगे कि बोल बाबा है शुरू अंक में नहीं था मिला
1: धनगरी जरल टीकापुर जरल ए अब गीत
0: धनगरी जरल कुलरिया जरल जरल राजापुर और जरल मोर टीकापुर का नहीं ये बोल
1: धमार गीत हो
0: धमार नहीं हो ये हमारी उस साल के घाटा कोला गीत सबके बनाए बनल रहो
1: ए वो गीत नहीं कोई और गीत छानी हम जानल गीत अब हम अजल हम बजाइने प्रयास करब नहीं अब आपने और गीत बजी तो फैन अपने नहीं सोच भी कहे कि महीन खासे जानकारी नहीं हुई गीत के बारे में तब मारे हम प्रयास तो ही करब और गीत बजी तो अपने दुखाना मन भी की तो अब ही और गीत छाल ले भी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ी
0: नहीं
1: तो दोस्तों वो गीत मन पड़ने के कारण क्या हो तो कौन सा करे वो गीत मन पड़ल अपने
0: साल के याद एक के हमारी जो वही साल के घटना में के बताने बताने का तो दुख आ जाइए याद
1: है केन सुनाई भी एक जनहन के नाम ली
0: हमारे जाते हैं सागर टेलर के खड़क जी
1: खड़क चौधरी जी है ना ओके अब अगलग विदा हुई राम राम वहाँ फोन के लिए रही मिलन टेलर से वहाँ से रमायल होगा फिल अपने उनके फैन हमन सही डायल कर भी सुने का नबे 561255 संगानी में उनका फरमाइशी गीत में खासा नहीं बुझले हूँ तर फैन मैं बजने प्रयास करा मैं और गीत बजी तो फिर वहाँ कही सकला नहीं कोई बात नहीं हो तर हम गीत जोड़ गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी सुनने का नबे 561255

0: खोजत खोजत राजापुर तक खोजिन
1: कहाँ से खोज लो गोचुआ
0: अब दे बताए अरे टीकापुर खोजिन नारायणपुर फे खोजिन धर्मापुर और प्रतापुर में फे खोजिन खोजनो जाके थापापुर में
1: अच्छा?
0: रोजनो जाके मोहनपुर में फे होय मोर मन परल होय होय होय मोर मन परल मन रखनी भेटेनु ज्योतिपुर में होय

0: মর্দি ঠোজ নিওয়ার বাটি হা
1: ফানারো
2: তোর শ্বশুর
0: দুনুক নরম যে দুটো জানিবি উইনকি হালত মরে হাসুই জানল
3: सूचना सूचना सूचना
4: भजनी मा स्वास्थ्य शिविर हुने बारे को सूचना
3: भजनी नगरपालिकाको समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली को आयोजना र सौभाग्यश्वर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर कैलाली का विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा निशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने महानुभावहरूले तोकिएको मिति स्थान र समयमा उपस्थित भए मौकाको फाइदा लिन हुन अनुरोध गरिन्छ।
4: शिविरमा पाइने विशेषज्ञ सेवाहरू
3: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा,
4: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
3: जनरल फिजिसियन सेवा,
4: जनरल सर्जरी सेवा।
3: शिविर हुने मिति यही बदौ 7 गते आइतबार।
4: स्थान मोहनयाल मावि भजनी।
3: समय बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म। भजनी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भजनी कैलाली।

0: फोन नम्बर 9848440598 सम्पर्क गर्नुहोला।
1: एक नम्बर वडा कार्यालय टिकापुर नगरपालिका।

0: पैक लिटे
1: एंसल पैक कि लिटे
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लिटे कैश फिर तक ले लिटे
2: एंसल पैक कि लिटे शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
4: न्यू अछाम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चौक टिकापुर कैलाली सञ्चालक दुर्बा सुनार

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी की कपूर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला साइडी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हमन फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
4: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
5: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
6: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: टीकापुर नगरपालिका को ग्रामीण अल्ट्रासाउंड सेवा बारे अत्यंत जरूरी सूचना।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। वडा नम्बर 2 विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 4 गते।
0: वडा नम्बर 3 रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 5 गते।
1: वडा नम्बर 1 गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन भदौ 6 गते।
0: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते।
1: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते।
0: वडा नम्बर 9 ढुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते।
1: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते।
0: र वडा नम्बर 7 छत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते।
1: सबै ओडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
2: छिच्छी फे चर्पी भर्गिल का करना हो का
3: चर्पी भर्न सेपे का चिन्ता आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाईमा फोन गरी आ बाक सरसफाई कै दिहे।
2: फोन नम्बर कटा हो त
3: ली डायल करी 97-620-20-300।
2: हेलो आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई हो?
4: हजुर हो।
2: महिन राजापुर बजारमा ट्याङ्की सफाई गर्न बा?
3: कन्ठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास ओ रिङ वाला टोयलेट सरसफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा हान सम्झवे। संचालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97-620-20-300 ओ 98-656-92-026।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के सन्ध्या 5 बजे थारू भाषक खोज खबरमा आफ्नो कन स्वागत वा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौक्र अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो मा फेस सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू गरी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वास्तु लहान स्वागत, सुदूरपश्चिमके मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पहिलो विश्वासके मत, झुटा विवरण पेश गरेको थाई शिक्षक नियुक्ति लेना शिक्षकको प्रमाणित गर्न अधिकारी विरूद्ध मुद्दा, ओ लड़का प्रकन्न शिक्षा के संग संस्कार सिखैना जरूरी, सरोकारवाला पक्ष सक्कु जना लागपना जानकार हुकन के कहाई। आप खोज खबर विस्तारमा टीकापुर नगरपालिकामा पहिलो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन महिला सरुवा होका आयलबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय से सरुवा होका आयल हुइलक उपसचिव ममता बास्तोला बुधबार कार्यालयमा हाजिर हुइलक हुइट। लौ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोला सहित सरुवा होकन टीकापुर आयल हुइलक अन्य कर्मचारी टीकापुर नगरपालिका एक कार्यक्रम के बीच मन स्वागत करलबा। स्वागत कार्यक्रममा बोल्ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोला स्वागत कलकमा नगरपालिका हन धन्यवाद देती नेपाल सरकार टीकापुर नगरपालिका के एन कानून तथा नगर कार्यपालिका के निर्णय अनुसार नगरपालिका के काम कार्यवाही आग बढ़ैना प्रतिबद्धता व्यक्त करलबाट। वहाँ कर्मचारी हुक र राष्ट्रका सेवक हुइलक उहाँसे एन नियम से मिल्ना कामन सेवा गराई यहाँ दुख नै दिए, ओ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सेवा गराई के काम कर मातहत के कर्मचारी हुकन निर्देशन समेत देलबाट। सक्कु नागरिक के प्राथमिकता सुशासन हुइलक उहाँसे नगरपालिका बनैना जिम्मा कर्मचारी के कानमा रहलक हुइलक उहाँसे हुइलक नीति नियम मन रहकन काम कर समेत कर्मचारी हुकन निर्देशित करलबाट। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित कर्मचारी हुकन स्वागत करती टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी टीकापुर नगरपालिका एक ठो परिवार हुइलक उहर्से यहाँ आशाकल्पा छ किहुन काखा किहुन पाखा निखै काम गर निर्देशन देलबाट। टीकापुर नगरपालिकामा पहिलो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 13 जना कर्मचारी हुक र सरुवा होक आइलबाट यीसे आगके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल के जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटमा सरुवा हुइबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट प्रदेशसभासे विश्वास के मत प्राप्त करलबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट प्रदेशसभासे विश्वास के मत प्राप्त करलखुट। बुधबार बैठक प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी 46 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये भट्टके पक्षमा 31 मत र विपक्षमा 15 मत पर्लख। सरकारके नेतृत्व गर्दी रलक नेकपा के 20 ओ एमाले के 11 प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री भट्ट के पक्षमा मतदान गर्नबाट कांग्रेस ओ राष्ट्रिय स्वतन्त्र रापरपा के प्रदेशसभा सदस्य विपक्षमा मतदान गर्नबाट। नेकपा संसदीय दल के नेता भट्ट शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश के 5 मुख्यमन्त्री मन नियुक्त हुइल रह। एमाले ओ नेकपा बीच सत्ता साझेदारी के सहमति हुइलपा छ। अल्पमतमा पलक कांग्रेस के कमल बहादुर शाह बिहीबार मुख्यमन्त्री पद से राजीनामा देल रह। कैजात लड़का पर्का कलक कच्चा माटी हुई लड़का पर्कन जौन रूपन चहबो ओह रूप मन बटल सीख जात लड़का पर्कन कालके दिन कसिन बनैना कनाबाट हुकन आज दिलक शिक्षा ओ हुकन सिखा गिलक संस्कार मन भरपरट। लड़का पर्कन में शिक्षा के संग संस्कार ओ मूल्य मान्यता के ज्ञान हुईना फे ओत्र आवश्यक बा। लड़का पर्कन संस्कारी बनाई अभिभावक शिक्षक ओ सरकारवाला पक्ष सकुन के भूमिका सम्मान रह परट। संस्कार मनिन के जीवन के एक महत्वपूर्ण बाटो हो। समाज मन संघर्यन के बीच में हुआ या अन्य मनिन के बीच में लड़का पर्का देखना व्यवहार वा प्रवृत्ति नई हुकन के संस्कार हो। संस्कार के विकास लड़का पर्कन के घर परिवार ओ समाज कना क्रियाकलाप में फिर कुछ हदसम निर्भर रहल। लड़का पर्कन के पहल पाठशाला घर हो कलश्य पहल शिक्षक हुकन के अभिभावक हुईट। लड़का पर्कन के लाख आदर्श वा प्रेरणा के मूर्ति हुकन के दाई बाबा ओ शिक्षक हुईट। लड़का पर्कन के विकासात्मक मनोविज्ञान व्यवहार ओ भावना बुझक हुकन के भावना रूचि आवश्यकता अनुसार के सही तरीका से व्यवस्थापन कर अभिभावक हुक्र महत्वपूर्ण भूमिका ख्यालपना रहत। शिक्षा मनिन्हन ज्ञानी बनायत कलशे संस्कार संस्कारी बनायत संस्कारी मने जब फे जीवन मन सफल हुना हुईला कुंसे हुकन असल बात सिखाईपना अभिभावक गोपाल बिकब टुलेबाट लड़का पर्का घर पाछ औरो व्यवहार सिक्ना ठाउँ कलक विद्यालय हो। विद्यालयमा शिक्षक हुकर हुकनके मनो सामाजिक अवस्था बुस्क शिक्षण क्रियाकलापके सँग सामाजिक संस्कार ओ मूल्य मान्यताके सहितके शिक्षामा जोड दिए परत जीसे लड़का पर्कन हन संस्कार का हो संस्कार जीवन मन का कर आवश्यक बा यीसे मनिनके जीवन मन कसिक सफल बनायत कना बात बुझायत ओहमार विद्यालय शिक्षाके सँग सामाजिक संस्कार सिखाइपनामन जोर देथ टीका जोर दिएपना त्रिभुवन मावि बटनपुरके प्राध्यापक सामाजिक शिक्षक रविन्द्र कठायत बटुलेबाट बालबालिका हुकन शिक्षाके सँग संस्कार सिखैना आवश्यक बा यदि लड़का अवस्थामा लड़का पर्कन संस्कार सिखैना हो कलसे कालके दिनमा हुक्र समाजमा घुलमिल नै सिखिना हो कलसे कालके दिनमा न हुक्र समाजमा घुलमिल हुइनी सेक्ना व्यवहारिक बननी सेक्ना अक्कलह महसुस गर्ना हो कालकी दिनमा जाक ढ्यूर मानसिक रोगके शिकार होकन गलत डगर फेरवाज सेक्ना हुइला कुहर्से हुकन छुट्टिए उमेरमा से संस्कार सिखिना आवश्यक रहलक बाल कल्याण संघ टीकापुरके परियोजना संयोजक राधिका गिरी बटुलेबाट लड़का पर्कनसँग हुकनके क्षमता अनुसारके अपेक्षा धरपरट और जहनसे तुलना प्रतिस्पर्धा ओ पक्षपात कबू फेकर निहित लड़का पर्का चार वर्षके उमेरसम्म आपन संवेग अभिव्यक्त कर सेक्थ तर आपन नियन्त्रण कना वर्षौंसम्म लागत सच्चा बोल्ना मायालु स्वर मन नाउ बलैना आदर शिष्ट भाषा से बातचीत कर परत भावना व्यक्त कर ओ कर्न अवसर दिए परत मानव विकासके चरण अन्तर्गत सक्कुन से ढ्यूर महत्वपूर्ण कलक बाल्य अवस्था अर्थात दुई वर्ष थे से छ वर्ष के उमेर हुकनके जीवनके आधारशिला हुइला कुहर्से इह उमेरमा लड़का पर्कन संस्कार आनी बानी ओ संस्कारके बात सिखैना सिखाई से गिल करछे प्रभावकारी हुइना सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र के सह प्राध्यापक डाक्टर नाथुराम चौधरी बटुलेबाट खोज खबर म एकघरिक विश्राम विश्राम पाछैनिनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
3: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423359
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सरकार राष्ट्रिय गौरवकीय सिंचाई आयोजना ऐना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य लेलबा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय आयोजना प्रमुख हुकन ढिला सुस्ती अन्त्यकैका तोकगिलक समयमा निर्माण सम्पन्न गर निर्देशन देलबा। विभिन्न राष्ट्रिय गौरवकीय सिंचाई आयोजना हुकनमा हालसम्मकै प्रगति लागत चुनौती हो ऐना दिनकै कार्ययोजनाकै बारेमा छलफल हुलबा। लम्मा समय थिएसे निर्माणकै चरणमा न रहलक तथा निर्माण सम्पन्न निहुलक सिंचाई आयोजना हुकन ऐना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्न तयारी सरकार गर्लबा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय राष्ट्रिय गौरवकी सिंचाई आयोजना हुकन उच्च प्राथमिकतामा धर्कन निर्माण सम्पन्न गर पहल शुरू गर्लक हो। मंगलबार छठो सिंचाई आयोजनाकै प्रमुख हुकन मन्त्रालयमा बोलाक ऊर्जा मन्त्री विराज भट्ट श्रेष्ठ आयोजना निर्माणमा हुइटिरलक ढिला सुस्ती अन्त्यकर्क निर्माण काम तीव्र टुलैटी तीव्र बनैटी बनागिलक परिणाम देना कैकन काम गर निर्देशन देलबाट। मन्त्री श्रेष्ठ राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना कैगिल सेफे गौरव कर्ना खालके प्रगति निदेखिलक बटुइटी आयोजना प्रमुख हुकन हन कार्ययोजना प्रस्तुत कर्क तोकगिलक समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर सुझाव देलबाट। वहाँ सिंचाई आयोजना समयमा सम्पन्न कैक मुलुकके आर्थिक समृद्धिके मेरुदण्ड मान्जिना कृषि क्षेत्र गति देह आवश्यक रहलक बटुइलबाट। मन्त्रालयकै आयोजना योजना शाखा प्रमुख मोहन कुमार साकेके अनुसार ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ आयोजना हुकन 32 बुन्दे मार्ग निर्देशन देलबाट दशकौं थेसे रुग्न बनलक आयोजना हुकनके आव गति मन आघ बढ़ैनाकैक मन्त्रालय तयारी गर्सेकलक साकेके कहाइबा। विश्वासके मत मंगती कर्णालीके मुख्यमन्त्री सुशासन ओ विकास मुहार पहिल प्राथमिकता हो कैक कलबाट। कर्णालीके मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाही सुशासन ओ विकास आपन पहिल प्राथमिकता रहलक बटुइलबाट। वहाँ विश्वासके मत मंगती गरी पिहन प्रतिपक्ष मानकन सिद्धान्त अनुरूप काम गर्न बटुइलबाट। मुख्यमन्त्री शाही बजेट कार्यान्वयनकै गतिमा सुधार लन्ना ओ साझा विकासकै लाग हातेमालो गर्दै आग बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नबाट। कर्णालीकै मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाही सुशासन ओ विकास नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहना बटुइलबाट। बुधबार विश्वासके मत लेना विषय उपर छलफलमा भाग लेती उहाँ असिन बटुइला फिट हमार प्रतिपक्ष कलक गरिबी हो यी सिद्धान्त अनुरूप हाम्रो काम गर परटकैकन उहाँ विश्वासके मत मंगती कल बजेट कार्यान्वयनकै गति हन सुधार लन्ना मुहार पहिल प्रयास रही। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछै नि बाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
4: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नि करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
8: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
9: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लमजुङके सुदूर बजार स्थित आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षक नवराज केसी व तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ नेउपाने विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्लबा झुठा विवरण पेश गरी कठाई शिक्षक बन्लक आरोपमा हुकनके विरूद्ध विशेष अदालत काठमाण्डुमा आरोप पत्र दायर गर्गिलक हो शिक्षक केसी आपन विस्थापित शिक्षक दावीकर्ती झुठा विवरण पेश गरी माध्यमिक तहमन थाई नियुक्ति लेल रह विक्रम सम्म 2063 सालमन शिक्षक सेवा आयोग अस्थायी विस्थापित शिक्षक हन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कर निर्देशन कर्ना प्रतिस्पर्धा कर देलक निर्णय पाछ केसी जालसाजी करलखुट वहाँ माध्यमिक विद्यालयके अस्थायी पर्से राजीनामा देखन प्राथमिक तहमन नियुक्त हुइल रह तर आफ्न माध्यमिक तहके विस्थापित शिक्षक हुइलक बटुटी झुठा विवरण पेश गरेका आन्तरिक परीक्षामा सामेल हो केसी थाई शिक्षक थाइक नियुक्ति लेलक आयोगके अनुसन्धान से खुलल बा शिक्षक सेवा आयोग 2061 मंगसिर 15 गते अस्थायी शिक्षकके लागि विज्ञापन खुलाइबेर केसी से न्यूनतम योग्यता समेत निरह वहाँ यी से आग नै 61 साल असार 2 गते थाई प्राथमिक शिक्षक के नियुक्ति ले सेकल रह अनुसन्धान के क्रम में केसी अपन विस्थापित शिक्षक निहुलक स्वीकार करलबाट अख्तियार आरोप पत्र में कैगिलवा थाई शिक्षक होक राजीनामा देख गैलकट स्वयं स्वीकार करलबाट वस्तकन तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ नेउपानी हफी अख्तियार प्रतिवादी बनैलबा शिक्षक सेवा आयोगके दरखास्त फारमन केसी भर्लक झुठा विवरण नेउपाने प्रमाणित कर देल रह नेउपाने नै स्वीकृत कर देल पाछ केसी परीक्षामा सामेल हुन मौका पैल रह झुठा विवरण पेश गर्कन सरकारी नियुक्ति लेलक कारण अख्तियार शिक्षक केसी विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण एन 2049 के दफा 16 के उपदफा एक बमोजिम के कसुर मन कैदो जरिवाना के माग दाबी करलबा वस्तक तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेउपाने सोही एन के दफा 22 बमोजिम मतियारी के रूपमन सजाय हुईपन अख्तियार के माग रहलबा मुख्य कसुरदार से कर्ना कसुर मन मदद कै गैर कानूनी लाभ पुगैलक अभियोग नेउपाने पर फेर रहलबा नेकपा एमाले नेपालकै राष्ट्रियता उपर विभिन्न दृष्टिकोणसे खतरा रहलक औलेलबा एमाले संसदीय दलके नेता रामबहादुर थापा बादल प्रतिनिधि सभाके बैठकमा बोल्टी असिन बटी लखुट उहाँ बालेन्द्र सरकारके छुट्टी शासनकालमन राष्ट्रियता लोकतन्त्र व जनजीविकाके सवाल उपर गम्भीर प्रश्न उठैलखुट आग कलबाट रासपाके आन्तरिक सत्ता संघर्षले फे नेपालकै राष्ट्रियता उपर गम्भीर संकट आइसेकना चिन्ता व्यक्त कलाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सभापति रवि लामी छानेके भारत भ्रमण हुइनासे ठिक एक दिन पहिले प्रधानमन्त्री बालेनके संसदमा आकस्मिक आगमन हुइलक उहाँ बटुलेबाट अनि वाकर पाछ सदरमा अस्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति देलक टिप्पणी कलाबाट यस समाचारके सँग खोज खबर ओराइल अन्त्यमा जेति जेति खबरके मुख्य शीर्षक फेर्से टिकापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वास्तु लाहन स्वागत सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पहिलो विश्वासके मत झुठा विवरण पेश गर्न थाई नीति लिन शिक्षकको प्रमाणित गर्न अख्तियार अधिकारी विरूद्ध मुद्दा ओ बाल बालिका शिक्षा के संग संस्कार सिखैना जरूरी सरोकार वाला पक्ष सबको जनागपना जानकार हुकन के कहाई लीता आबकला थारू भाषा खोज खबर अतः और समाचार 6 बजे खोज खबर सुन सिक्दी आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी ने धन्यवाद देती मैं गीता चौधरी से विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
10: हिंदू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
11: न्यू अछाम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चौक टिकापुर कैलाली संचालक ध्रुव सुनार।
10: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
11: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टिकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी।
12: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा।
13: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ MBBS MD इन्टरनल मेडिसिन DM कार्डियोलोजी।
10: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 6 गते शनिबार समय बिहान 10 बजेदेखि
13: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
12: उपचार हुने समस्याहरू
13: हृदयघात, हार्ट अट्याक, उच्च रक्तचाप, धड्कन अनियमितता, मुटुमा दुखाइ वा जलन, स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या, कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या, हात खुट्टाहरू झमझमाउने, मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप, एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप, सुगर, थाइराइड, दम, निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान,
12: साथै मुटुको इको, रगत जाँच र ECG पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 98216-14306 र 98486-39785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।
5: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपथ मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
5: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
4: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ। त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
5: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
14: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, JCBमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
15: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98487518।
16: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वहाँ नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएका अनला बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दी भोज आगिले न अब्बसम्म एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोज्दै खोज्दै परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिले नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हौ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864241208 ओ 9846239261
2: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालयको अनुरोध जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू सड़क किनारमा पशु चौपाया नबान्न र सड़क किनारमा मल वस्तु नथुपार्न अनुरोध गर्दछौ साथै सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधेर ढुङ्गा बालुवा माटो ग्राभेल मल थुपारेर दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी थुपार्ने व्यक्तिले लिनुपर्नेछ जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लायकपुर
3: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा
4: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ एमडीबीएस एमडी इन्टरनल मेडिसिन डीएम कार्डियोलोजी
5: डाक्टर आउने

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उ मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
5: एनसेल पैक किलिते जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एनसेल ऐप में क्लेम करी
6: कैश फिरता लेलिते कैश फिरता लेलिते
5: एनसेल पैक किलिते शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
7: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: विजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेकल।
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो नि करत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
4: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र
5: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसके कसो कालले छिटो नलाग
6: होइन चाइनाजो माइलो
7: के बर्बर बर्बर कराइरहेछ के भएको छ हो तलाई
5: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसके छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्यो म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
6: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टीकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
8: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
9: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ढकला रोड टीकापुर कैलाली
10: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
11: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
12: अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: लिटे शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग।
1: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगड़ी
3: नहीं का मम्मी टी कपूर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
1: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर की आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हमन फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हार जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीनबाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-28 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।